बाबू को तू बाबू हम की बेटे हम की बेटे हर लम्बा गो हर लम्बा दी बाबू अगल।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

घड़ी ने जैसे ही 10 बजाए समझ लीजिए गपशप का टाइम शुरू हो गया। जी हाँ नमस्कार, आपने ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक, जहां लेकर नॉनस्टॉप गपशप मैं हूँ देवजानी हाजिर आपके दरबार में। बातों का ऐसा सिलसिला जहां हर मोड़ पर मिलेगी नई जानकारी, हल्की फुल्की मस्ती, दिलचस्प किस्से और संगीत का बेहतरीन साथ। तो जहां है वहीं से जुड़ जाइए, क्योंकि अब अगले एक घंटे तक गपशप होगी बिल्कुल नॉनस्टॉप।

आइए दिन की शुरुआत करते हैं मौसम की ताजा जानकारी के साथ। वैसे दिन की शुरुआत तो मेरी हो चुकी है एफएम गोल के ही साथ, पर रेनबो में पहली बार मिल रही हूँ आपसे आज सुबह। आज कोलकाता में आसमान पर बादलों का डेरा रहने की संभावना है। दिन भर कहीं

हवा की गति कभी कभी 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। इसलिए आज यानी 4 जुलाई से 7 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल इतना ही। मौसम का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और आपके दिन की शुरुआत हो खुशियों और मुस्कान के साथ।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक चुटकी नुस्खे। बरसात के मौसम में एक परेशानी लगभग हर घर में होती है, कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन धूप ना मिलने की वजह से उनमें सीलन की गंध आने लगती है। तो आइए आज की एक चुटके नुस्खे में जानते हैं इससे बचने के कुछ आसान उपाय। सबसे पहले कोशिश करें कि कपड़ों को खुली हवा वाली जगह पर सुखाएं। जाहिर सी बात है कि इस मौसम में धूप का मिलना नामुमकिन तो नहीं पर बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर धूप ना हो तो पंखे की हवा भी काफी मदद करती है। कपड़े पूरी तरह सूख जाएं तभी उन्हें अलमारी में रखें। थोड़ी सी भी नमी रह जाए तो बदबू के साथ फफूंदी भी लग सकती है, और इसलिए अलमारी में नीम की कुछ सूखी पत्तियां या कपूर के 2-3 टिकिया रखने से भी सीलन की गंध कम हो जाती है। और एक बात, बरसात में एक साथ बहुत सारे कपड़े धोने के बजाय थोड़े थोड़े कपड़े धोएं, इससे वे जल्दी सूखेंगे और ताजगी भी बनी रहेगी। तो बस इन छोटे छोटे उपायों को अपनाइए और बरसात के मौसम में भी अपने कपड़ों को रखिए साफ, सूखा और महकता हुआ। इसके साथ आज की एक चुटकी नुस्खे यहीं पूरी होती है।
2: एक चुटकी नुस्खे।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। आज के दिन
1: कैलेंडर की तारीख हर साल लौट कर आती है, लेकिन अपने साथ इतिहास की कई यादें भी लेकर आती है। कुछ घटनाएं जिन्होंने दुनिया की दिशा बदली, कुछ उपलब्धियां जो हमेशा याद रहेंगी, और कुछ ऐसे नाम जिन्हें समय कभी भुला नहीं पाया। आइए जानते हैं आज के दिन इतिहास में। ১৭৭৬ में अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की और ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की प्राप्त की। जी हाँ, आज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। 1777 में फिलाडेल्फिया और बोस्टन में पहली बार संगठित स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। 1827 में न्यूयॉर्क में दास प्रथा समाप्त कर दी गई आज के ही दिन। 1828 में बाल्टीमोर ओहायो रेल मार्ग का निर्माण शुरू हुआ, जो अमेरिका का पहला यात्री रेल मार्ग बना। 1837 में बर्मिंगम और लिवरपूल के बीच ग्रैंड जंक्शन रेलवे, दुनिया की पहली लंबी दूरी की रेलवे लाइन खोली गई। 1862 में चार्ल्स डॉटसन यानी लुइस कैरोल ने ऑक्सफोर्ड में आइसिस नदी, जो थेम्स है, पारिवारिक नौका विहार के दौरान एलिस लिडल के लिए एलिस इन वंडरलैंड की रचना करते हैं। और 1865 में यही किताब, इसका पहला संस्करण प्रकाशित होता है। 1884, फ्रांस ने पेरिस में संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया, जो दोनों देशों के बीच मित्रता और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के साझा आदर्शों का सम्मान था। 1946 में फिलीपींस ने एक संप्रभु देश यानी सॉवरेन कंट्री के रूप में अमेरिका से स्वतंत्रता प्राप्त की। 1959 में अलास्का को राज्य का दर्जा मिलने के सम्मान में अमेरिका का नया 49 स्टार फ्लैग आधिकारिक हो गया। 1996, हॉटमेल नामक एक निशुल्क इंटरनेट ईमेल सेवा की शुरुआत।

हुई। 1997 में नासा का अंतरिक्ष यान पाथ फाइंडर मंगल ग्रह के एरिस वेडिस क्षेत्र में उतरा। 2009 विश्व व्यापार केंद्र हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से 8 साल बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मुकुट जनता के लिए फिर से खोल दिया गया।

0: आज जयंती है भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भारत के अस्थाई प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की, जिनका जन्म 1898 में ब्रिटिश भारत के सियालकोट में हुआ था। आज जयंती है इतालवी अभिनेत्री, फोटो पत्रकार, मूर्तिकार जीना लोलो ब्रिजिडा का, जिनका जन्म 1927 में इटली में हुआ था। और आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं भारतीय संगीतकार, निर्माता, गायक M.M. किरावानी या फिर M.M. क्रीम, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में 1961 में हुआ था। और अगर इसी के साथ आप भी 4 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाते हैं तो हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: आज के दिन

आज जन्मदिन है भारतीय सिनेमा के एक ऐसे संगीतकार का जिनकी धुनों में मधुरता भी है, गहराई भी और एक अलग सी आत्मीयता भी। हम बातें कर रहे हैं एमएम क्रीम की। दक्षिण भारतीय सिनेमा में वे एमएम किरवानी नाम से जाने जाते हैं। 1991 में तेलुगु फिल्म क्षण क्षणम के संगीतकार के रूप में अपने सफर की शुरुआत करने वाले एमएम क्रीम ने क्रिमिनल, जिस्म, सुर, द मेलोडी ऑफ लाइफ, रोग, पहली, जख्म जैसी फिल्मों में अपनी यादगार धुनों से श्रोताओं का दिल जीता। फिल्म आरआरआर के गीत नाटू नाटू के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभूतपूर्व सम्मान मिला। उनकी धुनों की सबसे बड़ी खूबी है सरलता, गहराई और भावनाओं को सीधे दिल तक पहुंचा देने की क्षमता। चलिए, कुछ गीत तो उनकी फिल्मों के हम सुन ही चुके हैं, शुरुआत से ही सुनते ही आ रहे हैं, पर वो फेमस सा, मशहूर सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

കൾച്ചർ. बारिश को अपने स्पिरिट को डैम्पन बिल्कुल भी ना करने दे. अगर आपके लिए आज छुट्टी का दिन है तो बाहर निकलिए और आज के दिन का भरपूर आनंद लीजिए. 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप. मैं हूं देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ. और कोलकाता कल्चर में बता दूं कि आज शहर कोलकाता में आप किन इवेंट्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, किन में. कॉमेडी टेक्नो नाम से एक स्टैंड अप कॉमेडी शो है आज शाम. और इसके साथ ही साथ कुछ और कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडीज वगैरह भी हैं, जैसे बाबा सुरेश स्टोरी टेलिंग स्पेशल नाम से एक सटायर क्लब कार्यक्रम है आज की शाम. और इसके साथ ही साथ शाकाहारी वेज स्टैंड अप कॉमेडी शो, मारवाड़ी ड्रीम्स स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह कार्यक्रम है. और इसके साथ ही साथ एक और ब्यूटीफुल म्यूजिकल शो है तीन एक के तीन, जिस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं शुभमिता चक्रवर्ती, जगन्नाथ बसु, उर्मिमाला बसु, रूपंकर मुखर्जी, ऋतुव्रत भट्टाचार्य, स्नेहदीप राय. आज की शाम महाजाति सदन में ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही साथ रविंद्र नृत्य नाट्य उत्सव दमदम म्यूनिसिपल जो हॉल है वहाँ पे ये इनका सेकंड एनिवर्सरी इनका शो है, आप इस कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं, देख सकते हैं. और इसके साथ ही साथ अनगिनत वर्कशॉप्स बच्चों के लिए, बड़ों के लिए शहर कोलकाता में और उसके आसपास तो हैं ही.

सुरों का ये खूबसूरत सफर अब अपनी मंजिल की ओर है। आवाज थी श्रेया घोषाल की फिल्म रोग से गीत, जिसे संगीतबद्ध किया था एमएम क्रीम ने। आज हमने बहुत सारे गीत सुने जो एमएम क्रीम द्वारा संगीतबद्ध थे या फिर उनकी आवाज में थे। उम्मीद है उनकी मधुर धुनों के साथ बिताया हुआ ये एक घंटा आपके लिए भी यादगार रहा होगा। अब इजाजत चाहूंगी, फिर मुलाकात होगी एक नई प्रस्तुति के साथ कल। जी हाँ, फिलहाल विदा लेने से पहले सुनते हैं एक ऐसा गीत जो बरसों बाद भी उतना ही ताज़ा महसूस होता है जितना जब बना था तब था। पर उससे भी पहले बता दूं, आज हमने एमएम क्रीम द्वारा संगीतबद्ध कौन कौन से गीतों को सुना। कार्यक्रम की शुरुआत में जिस फिल्म से गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ चलो तुमको लेकर चले, एमएम क्रीम सोनू निगम श्रुति सदोलीकर की आवाज़, पहली फिल्म से गीत लागा रे चल लागा, चुप तुम रहो एमएम क्रीम की आवाज़, इस रात की सुबह नहीं फिल्म से गीत, और उसके बाद क्रिमिनल से तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए अलका याग्निक की आवाज, गुजर न जाए श्रेया घोषाल की आवाज में रोग फिल्म से गीत,

मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पापुन की आवाज, बेबी फिल्म से गीत, तुझ संग लगी, स्पेशल 26 का गीत, एमएम क्रीम और केके की आवाजें, विशाल मिश्रा राहुल सिपलीगंज की आवाजें, आरआरआर फिल्म से गीत नाचो नाचो, और अब आखिर में क्रिमिनल फिल्म से गीत, अलका याग्निक की आवाज, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। मैं देवजानी इसी के साथ लेती हूं आप सभी सुनने वालों से इजाजत।

0: লিসা না, আমাকে খুব জলদি কিছু জিনিস পাঠাতে হবে, কোনো সুপার ফাস্ট অপশন আছে নাকি?
1: আরে ভাই একদম, ইন্ডিয়া পোস্ট নিয়ে এসেছে 24 স্পিড পোস্ট, মানে পরের দিনই নিশ্চিত ডেলিভারি।
0: তাই নাকি? মানে দরকারি ডকুমেন্ট থেকে পার্সেল বা যে কোনো জরুরি জিনিস সবকিছু এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে?
1: আরে হ্যাঁ ভাই, রয়েছে রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং, পকেট ফ্রেন্ডলি রেট, আর সবচেয়ে জরুরি ওটিপি ভিত্তিক নিরাপদ ডেলিভারি। শুধু ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
2: বিশদে জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in।
3: গানে জো লগায়ে এন্টারটেইনমেন্ট কা তড়কা, আপ সুন রহে হ্যায় টিম কা তড়কা, টিম কা তড়কা, টিম কা তড়কা, 107 FM রেইনবো পর, টিম কা তড়কা, টিম কা তড়কা, টিম কা তড়কা, 107 FM রেইনবো পর, রেইনবো পর।
4: एक सौ सात एफ एम रेनबो दिल से दिल तक के सभी लिसनर्स का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक तीन का तड़का में। 3:04 और मैं रहूंगी आपके साथ पूरे 4 बजे तक। चलिए सबसे पहले हो जाए परियोजना प्रस्तुति।
5: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति, सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
4: आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी योजना की जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2024 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ना और लोगों के बिजली बिल का बोझ कम करना। इस योजना के तहत सरकार लोगों को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक सहायता देती है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाता है तो सरकार उसकी लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती है। इस योजना का लक्ष्य है कि देश के लगभग 1 करोड़ परिवारों को इससे जोड़ा जाए। इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। सोचिए, इससे न सिर्फ बिजली बिल में बचत होगी बल्कि हम स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी देती है। आवेदन करने के लिए बस आपको pmsuryaghar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैं फिर से दोहराती हूं, pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आवेदन के बाद डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति के बाद सोलर सिस्टम लगाया जाता है। इसके फायदे अनेक हैं, बिजली बिल शून्य या बेहद कम हो जाती है, अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने की सुविधा और प्रदूषण में कमी, और सबसे बड़ी बात, देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में योगदान। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है हर घर सूरज की रोशनी से चमके, यही नए भारत की शक्ति है। तो आइए हम

0: सब इस योजना का हिस्सा बने और सूरज की रोशनी को अपने घर की शक्ति बनाए।
1: रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर, रेनबो पर।

दम लगा के हईशा फिल्म का ये गीत मुनारी ठाकुर ने गाया, वरुण ग्रोवर ने लिखा और अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया। आइए तीन का तड़का में आगे बढ़ते हैं और एक और गीत आपके सामने पेश करती हूँ, ये है अरिजीत सिंह की आवाज में।

सैयारा फिल्म के इस गीत को मिठुन ने लिखा और मिठुन ने ही संगीतबद्ध किया। और अब एक जरूरी सूचना जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, अभी अभी स्थानीय मौसम विभाग की तरफ से पता चला है कि बांकुड़ा, हुगली, साउथ 24 परगनाज जिले के कुछ क्षेत्रों में आज आने वाले 2 से 3 घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवा, हल्के से मध्यम आंधी तूफान और आकाशीय बिजली के साथ साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अब 3:19:08 बता दूं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

तनु वेद्स मनु का ये गाना आपने सुना और 3:25 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 FM रेनबो दिल से दिल तक। और बता दूं कि मैं हूं आपके साथ 4 बजे तक और 3 का तड़का में एक और तड़का लगाते हैं अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी की आवाज़ के साथ।

0: What, Chunka?
1: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, अरिजीत सिंह, जॉनिता गांधी की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज और प्रीतम का संगीत। और ये सफर तीन का तड़का का जो है उसे एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए आप और बस इन गानों का लुत्फ उठाइए, क्योंकि सफर से इश्क करना सीखना चाहिए हमें। मंजिल जो होती है वो तो कुछ पल की मेहमान होती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं गल्ला गुड़िया की ओर।

फिल्म दिल धड़कने दो। यशोदा शर्मा, मनीष, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह, इन सब ने इस गाने में अपना योगदान दिया है। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और शंकर एहसान लॉय ने संगीतबद्ध किया। 3:34 और आप सुन रहे हैं तीन का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: तीन का तड़का में गानों का तड़का जारी रहेगा, पर एक बात जो आज मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, आज यूं ही एक सहेली के साथ बात हुई और बैठना हुआ उसके साथ, और वो कह रही थी कि पलक अपना कोई लगता क्यों नहीं, और जो अपने हैं वो परिवार परिवार ना होके परी बनकर वार क्यों करते हैं। बहुत गहरी बात कह रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। वो वार क्यों करते हैं हम पर ऐसे कि ना हम उस वार को सह पाते हैं, ना ही उससे निकल पाते हैं, ना ही बच पाते हैं। तो मेरे जहन में एक बात आई जो मैं अब आपसे साझा करने जा रही हूँ कि अपना और पराया होता कुछ नहीं है। अपना वो होता है कि जो भावनाओं को समझे। मुझे यही पता है, बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वो आपका अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो, बहुत दूर, वो पराया। तो आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, बस वही आपके अपने होते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे खून के रिश्ते भी हमारे अपने नहीं हो पाते। इस पर गौर कीजिएगा, और जब तक आप इस पर गौर फरमा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपम रॉय की आवाज में फिल्म पीकू का सुनिए ये अगला गाना, जिसे लिखा है अनुपम रॉय, मनोज यादव ने, और कंपोज किया है अनुपम रॉय ने।

और अब अगला गीत बॉर्डर टू फिल्म से सोनू निगम पलक मुच्छल की आवाज में, जावेद अख्तर के अल्फाज, मनोज मुंतशिर के अल्फाज के साथ अनु मलिक और मिठुन का संगीत।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत आपने सुना जावेद बशीर की आवाज़ में। एएम तुरज ने इसे लिखा और संजय लीला भंसाली ने इसे संगीतबद्ध किया। 3:55 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और अब अगला गीत अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में फिल्म ऊंचाई से। लिरिसिस्ट इरशाद कामिल, कंपोजर अमित त्रिवेदी। और इसी के साथ वक्त को फिर कुछ वक्त देने का वक्त आ गया है। आपकी आरजे पलक के पलक झपकाने का समय आ गया है। मुझे दीजिए इजाजत, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुद को हमेशा स्पेशल समझिएगा, क्योंकि खुदा ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई। अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है, दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक बरो 7 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक
1: 107 FM रेनबो। दिल से दिल तक के सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है आपकी आरजे पलक आपके अपने छायालोक में। 7:03:22 और मैं रहूंगी आपके साथ 8 बजे तक। पर छायालोक रहेगा आपके साथ 9 बजे तक, और 8 से 9 का जो सफर है वो आपके साथ तय करेगी आरजे संचयिता। जी हाँ, 8 से 9 बजे आप अपने फरमाइशी गीतों की फरमाइश, जी हाँ, आप अपने मनपसंद गीतों की फरमाइश कर सकते हैं 2213-1341 पे। एक बार फिर दोहरा देती हूँ, 2213-1341। 8 से 9 का हमारा जो समय है वो छायालोक में फरमाइशी गीत के लिए है। और अभी फिलहाल 7 से 8 जाने अनजाने।
0: जाने अनजाने

सैयारा का टाइटल ट्रैक आपने सुना अभी फाहिम अब्दुल्ला की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा, तनिष्क बागची, फायद अब्दुल्ला और अरसलान निजामी ने इसे संगीतबद्ध किया। बेहद खूबसूरत गीत। 7:10:35 और आप सुन रहे हैं छायालोक, और छायालोक में आज का सेगमेंट यानी कि शनिवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए जाने अनजाने यानी कि द नोन एंड अननोन ट्रिविया रिलेटेड टू हिंदी फिल्म्स एंड इट्स म्यूजिक। तो चलिए सबसे पहले रंग दे बसंती मूवी की बात करते हैं। क्या आपको पता है रंग दे बसंती वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड आहुति? जी हाँ। और कुछ ही टाइम बाद डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा और राइटर कमलेश पांडे ने डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट को वो द यंग गन्स ऑफ इंडिया नाम देना चाहते हैं। और ये अर्ली स्क्रीन प्ले और ड्राफ्ट स्टेजेस की बात कर रही हूं मैं, लेट 1990s में, बिफोर सेटलिंग ऑन द आइकॉनिक फाइनल नेम रंग दे बसंती। और ये फिल्म रिलीज हुई 2006 में। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से ट्रिविया के साथ सुनते हैं ये गीत दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज में, रंग दे बसंती का टाइटल ट्रैक।

7:18:09 और आप सुन रहे हैं छायालोक में आज का सेगमेंट जाने अनजाने अपनी आरजे पलक के साथ ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिल्म कहो ना प्यार है के बाद क्या हुआ था? जी हाँ, कहो ना प्यार है के बाद कहो ना प्यार है हुआ था, यानी कि ऋतिक रोशन को कहो ना प्यार है फिल्म की सफलता के बाद कहा जाता है 30,000 से भी ज्यादा शादी के प्रस्ताव मिले थे, यानी कि हर लड़की ऋतिक रोशन से बस यही जानना चाहती थी कि कहो ना प्यार है। उन्हें इस मूवी के बाद ओवरनाइट सुपरस्टारडम मिला और उन्हें बॉलीवुड का ग्रीक गॉड माना जाता था। उसके बाद उनकी कैरिज्मेटिक एक्टिंग, डांसिंग स्किल्स, चिसल्ड लुक्स, ये सब की दीवानी थी लड़कियां। और आज उसी फिल्म का टाइटल ट्रैक आपके लिए उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज में आप सुनेंगे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा और राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया।

7:26 और चलिए जाने अनजाने कार्यक्रम को, छायालोक को जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बता दूं आपको कि 2012 में, यदि आपको याद हो, तो एक फिल्म आई थी हीरोइन, और इसमें करीना कपूर थी। शायद आपको पता नहीं कि करीना कपूर ने इस मूवी में 130 से भी ज्यादा कॉस्ट्यूम्स पहने, और इसी फिल्म का एक गाना आपके सामने राहत फतेह अली खां की आवाज में।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा और जतिन ललित ने क्या खूब संगीतबद्ध किया इसे। क्या आपको पता है कि DDLJ पहले किसे ऑफर किया गया था? जी हाँ, राज मल्होत्रा का लीड रोल पहले सैफ अली खां को दिया गया था, पर क्योंकि उनके शेड्यूल से ये मैच नहीं हो रहा था तो बाद में इसे शाहरुख खान को दिया गया। और क्या फ्रेंड्स, आप राज और सिमरन को कोई और, यानी कि आप क्या शाहरुख खान और काजोल के अलावा किसी और को राज और सिमरन के रोल में इमेजिन कर सकते? मैं तो नहीं। आई मीन दिस आइकॉनिक रोल हैड टू बी प्लेड बाय शाहरुख खान। और मैं इसके पहले आपको मैंने सुनाया था फिल्म हीरोइन का गीत, हीरोइन का गाना। तो एक ट्रिविया जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि उस फिल्म में करीना कपूर ने 130 से भी ज्यादा डिफरेंट आउटफिट्स उन्होंने पहने और उनका वार्डरोब वाज ओवर अ क्रोर, वर्थ ओवर अ क्रोर। एंड ये वार्डरोब उनका जस्ट फॉर शो नहीं था, इट वाज अ क्रूशियल स्टोरी टेलिंग टूल, यानी कि हर कॉस्ट्यूम उनके कैरेक्टर माही के इमोशनल जर्नी को दर्शा रहा था, उनके स्टारडम से लेकर उनके पर्सनल और प्रोफेशनल डिक्लाइन को बता रहा था। और कुछ सीन्स में तो उन्होंने 4 से भी ज्यादा कॉस्ट्यूम्स चेंज किए। और कहा जाता है कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड एक्सटेंसिव कॉस्ट्यूम बजट्स इन बॉलीवुड हिस्ट्री, 7:41:05। आप सुन रहे हैं छायालोक में, आज जाने अनजाने अपनी आरजे पलक के साथ, ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। और अब 3 Idiots का सुनिए ये गीत शान और शांतनु मोइत्रा की आवाज में, और इस फिल्म से रिलेटेड फैक्ट्स इस गीत के बाद।

स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा और शांतनु मोइत्रा ने संगीतबद्ध किया। दोस्तों, क्या आपको पता है थ्री इडियट्स फिल्म का ये जो प्रेगनेंसी सीन था, जहां रैंचो, फरहान और राजू प्रिंसिपल वायरस की प्रेग्नेंट डॉटर मोना का डिलीवरी करवा रहे हैं, दैट टू यूजिंग अ वैक्यूम क्लीनर, कार बैटरी और पता नहीं क्या क्या, और ये जो सीन था उसे ओरिजिनली मुन्ना भाई MBBS के लिए प्लान किया गया था। जी हाँ, द हाई एनर्जी मेक शिफ्ट मेडिकल डिलीवरी, इट ऑल्सो शेयर्स अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री विद द मुन्ना भाई MBBS, क्योंकि मुन्ना भाई MBBS के लिए प्लान किया गया था और ये फैक्ट जो है वो काफ़ी लोग नहीं जानते। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ, एक और गाने के साथ, और ये गाना होगा फिल्म लगान से। और इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए सुनते हैं लगान फिल्म का ये गीत AR रहमान श्रीनिवास की आवाज में।

इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया A.R. रहमान ने। दोस्तों, इस फिल्म का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस फिल्म के एपिक क्लाइमैक्स क्रिकेट मैच को गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भुज में शॉट किया गया था, इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड ऑफ 10,000 लोकल विलेजर्स। यानी कि इन इस क्राउड को, इस इन विलेजर्स को टैकल करना था डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर को और आमिर खान को, और उन्होंने इन सभी को टैकल करने के लिए एक ट्रिक यूज किया। और वो ट्रिक ये था कि जब भी वो रेस्टलेस हो जाते उस गर्मी में, उस मैदान में वेट करके फिल्म्स के शूटिंग के दौरान, तब आमिर खान अपना वो हिट सॉन्ग गाते, आती क्या खंडाला। और तब जब ये क्राउड काफी एक्साइटेड हो जाती थी, तब फिल्म के क्रू ने सक्सेसफुली इस क्राउड के रियल टाइम फ्रेंटिक चीयरिंग और डांसिंग को कैप्चर किया और इस फिल्म के विक्ट्री सेलिब्रेशन सीन्स में एडिट करके से यूज किया गया। थाना इंटरेस्टिंग फैक्ट। 7:55:45 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक, और छायालोक में आज का सेगमेंट जाने अनजाने अपनी आरजे पालक के साथ ओनली ऑन 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। दोस्तों, 8 बजने ही वाला है। 8 बजे आप सुनेंगे न्यूज इन बंगाली। 2 मिनट के उस न्यूज ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेगी आरजे संचयिता फरमाइशी गीत का कार्यक्रम लेकर, और आप अपने फरमाइशी गीत, अपने मन पसंदीदा गीत 2213-1341 पर फोन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और फिलहाल छोड़े जा रही हूं आपको पीकू फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने, मनोज यादव ने लिखा, अनुपम रॉय ने संगीतबद्ध किया, और मुझे यानी कि अपनी आरजे पलक को अलविदा दीजिए। मेरे पलक जो है उनका छपकने का समय आ गया है, मुझे दीजिए इजाजत। आप कहीं मजाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक के। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: कार्यक्रम है छाया लोक, जहां न जाने बंधन न कोई शर्त, बस मन की मर्जी, दिल की धड़कन और संगीत का अनमोल संगम। आपके साथ हूं मैं संचिता, यह है आपका अपना मुक्त मन का संगीत सफर। कह सकते हैं सुरों की सरिता में बहने का समय है, जहां प्रस्तोता और श्रोता मिलकर रचते हैं हर पल एक नई महफिल। तो आइए सुरों के इस अनमोल यात्रा में शामिल हो जाइए, क्योंकि यहां हर गीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि दिल से महसूस भी होता है। तो चलिए जाने अनजाने के बाद कुछ जाने पहचाने सफर पर चलते हैं आपके साथ। तो पहला गीत है अगर तुम साथ हो, तमाशा फिल्म से इरशाद कामिल के बोल को ए आर रहमान ने संगीतबद्ध किया। सुनते रहिए और साथ रहिए।

0: 8:08 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक, और इसमें आप और हम साथ साथ हैं। और हमारे साथ इस वक्त कौन है? हेलो, हाँ नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे, अपना परिचय दीजिए।
1: राजकुमार तातिया नंदपुर से बोल रहे हैं
0: जी। और क्या सुनाएंगे आज? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक नया गीत सुनाते हैं, और सभी श्रोताओं से ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप नए गीत का अगर फरमाइश करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तातिया जी, ये गीत आपको, अगर मैं आपको फना से एक गीत सुनाऊं तो कैसा रहेगा, शान और कैलाश खेर की आवाज में?
1: अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा।
0: फना फिल्म आपने देखी होगी, अच्छी फिल्म है।
1: आप
0: अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार तातिया जी थे हमारे साथ, और इन्होंने कहा कि एक कैलाश खेर की आवाज में कोई सा भी गीत, तो शान और कैलाश खेर की आवाज, प्रशुन जोशी ने लिखी इस गीत को और जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया। अगर तुम साथ हो से पहला गीत तमाशा फिल्म से आप सुन रहे थे। आपको पता होगा कि ये जो गीत है, ए आर रहमान की धुन अलका याग्निक की वर्षों बाद मिली भावपूर्ण आवाज और अरिजीत सिंह का साथ इस गीत को अमर बना देता है। और ये बहुत कम ज्ञात है, कम लोग जानते हैं कि इस गीत के रिकॉर्डिंग के दौरान भावनात्मक अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया था, ताकि टूटते रिश्ते की जो पीड़ा है स्वाभाविक लगे। यही कारण है कि आज भी इस गीत को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिल को छूते हुए हमने देखा। फिलहाल एक और गीत राजकुमार तातिया ने कहा फना फिल्म से, इस गीत को सुनते हैं कार्यक्रम छायालोक।
2: ला ला ला ला ला।
0: आपके साथ

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

0: 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक, और इस वक्त हमारे साथ कौन है? हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, और जिस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हैं वो है छायालोक का दूसरा जो सेगमेंट है, दूसरा पायदान। 8 बजे से 9 बजे आपकी फरमाइश में, आपका नाम?
1: जहाँ जाता हूँ होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
0: श्याम कुमार चंचल, और इसी चंचलता के साथ आप फरमाइश भी बता दीजिए।
1: आज मन मेरा कर रहा है,
0: हाँ,
1: कि फिल्म आन मिलो सजना का वो गीत है, अच्छा तो हम चलते हैं।
0: अच्छा तो हम चलते हैं, और क्या क्या पसंद है बताइए
1: जी,
0: और कौन कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है?
1: मुझे ज्यादातर तो मैं अभी नई फिल्म तो मैं खूब कम देखता
0: हूं। नहीं, एक फिल्म का तो नाम बता ही सकते हैं।
1: मुझे जीने की राह।
0: जीने की राह, अभी आप बता रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि आपको कुछ और पसंद है, क्या सुनना पसंद?
1: वो एक गाना है, क्योंकि हम तुमसे
0: थोड़ा सा गुनगुना के सुनाए तो हम कोशिश करते हैं।
1: क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं सनम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपका प्यार है ना इसी तरह बरकरार रखिए, और आपको सुनाते हैं ये गीत, सुनना पसंद करेंगे?
1: अच्छा, जो बजाएंगे आप मुझे पसंद है।
0: वाकई धन्यवाद, बहुत बहुत आपका।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मैं अनुरोध करता हूँ उन लोगों को भी कि सुने और प्यार से।
0: बिल्कुल, प्यार से बने रहे, जुड़े रहे हमारे साथ।
1: हाँ जी, हाँ जी।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत अब फरमाइशी गीत हमारे साथ हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम छायालोक में। बताइए।
2: मेरा नाम है शुभजीत, मैं बेलघड़िया से बात कर रहा हूँ।
1: शुभजीत बेलघड़िया नॉर्थ कोलकाता से बात कर रहे हैं, क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: मैं वो राता लंबिया जो शेरशाह मूवी का है।
1: शेरशाह फिल्म आपने देखी है?
2: देखिए,
1: क्या फिल्म है। और आपने खुश कर दिया, पता है क्यों? जुबिन नौटियाल बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। आशीष
2: सिंगर है वो,
1: बहुत वर्सेटाइल है, बहुत वर्सेटाइल है। और जुबिन नौटियाल के साथ आशीष कौर की भी आवाज आपको सुनने में मिल रहा है, और तनिष्क बागची। हाँ जी,
2: बोलना चाह रहा, अगर आप इजाजत देंगे।
1: जी बिल्कुल, इजाजत है। भले,
2: मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, आकाशवाणी के जो टेक्निकल टीम है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये जो इनिशिएटिव लिए हैं कि लिसनर्स कॉल कर सके, अपनी बात बोल सके, अपनी फरमाइश कर सके। और आपको पता है, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि इतने सारे रेडियो स्टेशंस है अभी इंडिया में, कोलकाता में इतने सारे हैं, हम लोग ऑनलाइन में भी सुनते हैं कि कितने सारे,
1: बहुत खूब बहुत खूब।
2: लेकिन आकाशवाणी को हम लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आकाशवाणी वही एकमात्र नेटवर्क है जो डायरेक्ट लिसनर के साथ जुड़ते हैं वाया कॉल हो।
1: क्या बात है।
2: क्योंकि बाकी चैनल्स में क्या होता है, प्राइवेट चैनल्स जो है वहाँ पर सिर्फ गाना सुनते हैं, आरजे की बातें होती है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है लिसनर के साथ आरजे का और टीम का,
1: और बहुत स्वाभाविक ढंग से हम जो है आपकी पसंद जानने की कोशिश करते हैं, उसे उसी तरह से सुनाते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि नए गीतों की फरमाइश करें, तो आप तुरंत नए गीत लेके आ गए। और इस गीत में खास ये है कि तनिष्क बागची ने ही लिखा और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया। चलिए सुनते हैं इस गीत को आपकी पसंद से, सभी के लिए।

0: की राता लंबिया लंबिया रे और कटे तेरे साथ। बिल्कुल, यही तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव है कि आपके साथ इस सफर को काटें, आपके पसंदीदा गीतों के साथ। हमारे साथ कौन है? हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, आप अपना परिचय दें और क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं विमल मित्र राजबलहाट हुगली से बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है विमल जी आपका।
1: देखिए, अनुष्ठान से शुरू से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है आपका अनुष्ठान।
0: हाँ, थैंक यू सो मच।
1: आपका पास तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग उदित नारायण का होता, आप सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, सलमान खान बहुत पसंद है।
1: सलमान खान पसंद है, उदित नारायण पसंद है।
0: अच्छा, गीत पसंद है या हीरो पसंद है? दोनों पसंद है।
1: हाँ बोलिए।
0: मैं कह रही हूँ, गीत पसंद है या हीरो पसंद है?
1: और अनुष्ठान तो आपका
0: नहीं, अनुष्ठान तो अच्छा हो ही रहा है। मैंने आपसे पूछा विमल जी कि आपको सलमान खान हीरो पसंद है या गीत पसंद है आपको, उदित नारायण और अलका याग्निक की जो ये गीत है।
1: ठीक है दीदी,
0: ओके। शायद ये सुन नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। आप सबको बता दूं, विमल जी की तरफ से ये गीत जो है समीर ने लिखा और हिमेश रेशमिया ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम 107 FM रेनबो पर छाया लोक।

0: 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम छायालो 7:36 और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, अमी वासुदेव प्रसाद फुलिया मठ पर नदिया देखे बोल छी।
0: अच्छा, क्या सुनना चाहेंगे वासुदेव जी?
1: जन्नत फिल्म से क्या जरा सा दिल में दे जगह तू के किरा आवाज।
0: अरे वाह, क्या बात है। सईद कादरी का लिखा हुआ गीत और इसे प्रीतम ने संगीतबद्ध किया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को सुनाना पसंद करेंगे इस गीत को?
1: हमारे बंधु पद्मोत सामंत और संजीत पाल के सुनते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी को बता दूं, 2008 की ये जो फिल्म है जन्नत का हिट रोमांटिक गीत माना जाता है और दिग्गज गायक के आवाज में है। प्रीतम ने इसका संगीत तैयार किया था, सईद कादरी ने इसके बोल लिखे थे और इस गाने में इमरान हाशमी और सोनल चौहान जो है मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। और केके को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था इस गीत के लिए। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को वासुदेव जी की फरमाइश पर। सात बजकर 37 मिनट 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक में आपके साथ हूं मैं संचिता।

0: 8:42 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक संचिता के साथ और इस वक्त फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ है हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार आपका स्वागत है कार्यक्रम में कौन बोल रहे हैं
1: हेलो
0: हाँ कौन बोल रहे हैं अपना नाम बताएं अपना परिचय दें
1: मैं मुसद्दवत से राजेश बोलता हूँ
0: स्वागत है राजेश जी आपका क्या सुनना पसंद करेंगे
1: मोहम्मद आजीज का एक गाना लाल दुपट्टा मलमल का
0: अच्छा टाइटल ट्रैक और ये गाना आपको पसंद क्यों है राजेश जी
1: ये फिल्म बहुत अच्छा लगता है देखने की
0: अच्छा बहुत बार देखी होगी आपने
1: थोड़ा हम आजीज का गाना पसंद करते
0: अच्छा इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी यूं ही हमारे साथ बने रहिए आपका गाना हम जरूर सुनाएंगे किसको सुनाना चाहते हैं ये गाना
1: सुनाना खास नहीं है
0: अच्छा ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दें आप सभी श्रोताओं को लाल दुपट्टा मलमल का 1989 में गुलशन कुमार द्वारा टी सीरीज के तहत रिलीज किया गया एक बेहद लोकप्रिय हिंदी म्यूजिक एल्बम और जो है टेलीफिल्म है इस फिल्म के गीत आनंद मिलन ने संगीतबद्ध किए थे और उदित नारायण अनुराधा पौडवाल कुमार शानू जैसे दिग्गज गायकों ने इस फिल्म को आवाज दी तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी गीत के साथ राजेश जी की फरमाइश मोहम्मद अजीज की आवाज फिल्म का नाम लाल दुपट्टा मलमल का कार्यक्रम है छायालोक

0: 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत आप सुन रहे फरमाइशी गीत और इस वक्त मेरे साथ है हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार आपका स्वागत है कौन बोल रही है
1: नमस्कार दीदी मैं पायल बोल रही हूं खड़िया से
0: आपकी आवाज बहुत मीठी है बताइए
1: तो तुम्हारा सभी भालो तो
0: बहुत अच्छे हैं हम सब आप बताइए क्या सुनना पसंद करेंगी और किसे सुनाएंगी তেরে লিয়ে থোড়া সা গুনগুনা কে সুনাইয়ে বহুত প্যারি সি ইয়ে আপকি আওয়াজ বহুত প্যারি হে অর গানা তো হে হি আচ্ছা
1: ওকে তো আমি এই গানটা শোনাবো বলছো
0: হ্যাঁ থোড়া সা
1: ওকে বাট এই গানটা দিদি আমার লিরিক্সটা অতটা মনে নেই যতটা চেষ্টা করছি ওকে
0: জি
1: ঠিক আছে
0: That's it. बहुत बहुत शुक्रिया आपका पायल सुनते रहिए लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में सुनते हैं जावेद अख्तर के बोल को मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत फरमाइशी गीत सुन रहे थे। आज हमारे साथ शामिल हुए श्याम कुमार चंचल और शुभजीत, विमल मित्रा जी, वासुदेव जी मुर्शिदाबाद से और पायल बैनर्जी, सभी ने हमें बहुत खूबसूरत गीत सुनाए। आखिरी गीत मेरी तरफ से अरिजीत सिंह की आवाज ए दिल है मुश्किल, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल को प्रीतम ने संगीतबद्ध किया। इसी के साथ इजाजत दीजिए संचिता को, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी कार्यक्रम में। तब तक साथ रहिए और अगले कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 एफएम रेनबो सात सुरे सारा दिन सात सुरे सारा दिन।
5: तुमी सुनछो वीकेंड फिल्मी फीवर 107 एफएम रेनबो ते। वीकेंड फिल्मी फीवर, वीकेंड फिल्मी फीवर।

107 FM रेनबो ही आपने शंके में रही थी उच्चल आपके लिए हिंदी छाया गाने अनुष्ठाने आज प्रथमे अरिजीत सिंह कंठे वर फिल्मेर एक आंटी